हर जस कर्म धर्म पात पूजा काम क्रोध अग्नि मह पूंजा हर रस चाख्या तौ मन भीजा प्रणवत नानक अवर न दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर सबदी।

जब लग शब्द ना जाने, भूख प्यासा जग भया, तिपत नहीं बिन सतगुर पाए, सहज सहज मिले सुख पाई है।

0: आगे अंदर अर्ख खजाने पाया, जात वर्ण ते भय अतीता, ममता लोभ चुकाया, नाम रत्ते तीर्थ से निर्मल, दुख हौ मैं मैल चुकाया, नानक तिनके चरण पखाले, जिन्ना गुरमुख साचा पाया, प्रभाती महला तीजा बिपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
1: सत संगत जीओ, सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जो जी प्रीतम सतगुरु जी दे पास गुरु के सिखा ने बड़े प्रेम दे सहित बेनती की के सतगुरु जीओ कृपा करके दसो कि वह परमात्मा वाहिगुरु जी का घर कित्थे है, परमात्मा कित्थे वसदा है। तां सतगुरु जी ने प्रभाती राग अते विपास दोनां नूं मेल के दोने रागां दे विच सतगुरु जी ने दोने रागणियां दे विच कृपा कीती है। बड़े ध्यान दे सहित सुनिए जी, सतगुरु जी ने बड़े प्यार वाले बचन उचारण कीते ने।

कोट मध्य कोई संत दिखाया, नानक तिनके संग तराया। जे होवै भाग ता दर्शन पाइए, आप तरे सब कुटुंब तराइए। रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिख सब काटे। धर्म राय के कागद कागर फाटे, साध संगत मिल हर रस पाया। पार ब्रह्म रिद माहे समाया, राम रमत हर हर सुख पाया। तेरे दास चरण सरनाया। रहाओ चूका गौण मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुक्त द्वार। हर प्रेम भगत मन तन सद राता, प्रभु जनाया तब ही जाता। घट घट अंतर रविया सोय, तिस बिन बीजो नाही कोय। बैर विरोध छेदे भै भरमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा। महातरंग ते कांड है लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा। जप तप संजम नाम सम

होम जग उर्ध तप पूजा कोट तीर्थ इसनान करीजा चरण कमल निमख हृदय धारे गोविंद जपत सब कारज सारे ऊचे ते ऊचा प्रभ थान हर जन लावह सहज त्यान दास दासन की बांछाओ तूर सर्ब कला प्रीतम भरपूर मात पिता हर प्रीतम नेरा मीत साजन परवा।

0: मरण जीवन की शंका नासे, आपन रंग सहज परगासी, प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा रहाओ। जह आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लिव तत लुकाना, जो किछ होआ सो तेरा भाणा, जो इव बूझे सो सहज समाणा। कहत कबीर किलबिख गए खीणा, मन भया जग जीवन लीणा, प्रभाती अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। हिंदू मूरत नाम निवासी, दोहमह तत ना हेरा।
1: अल्लाह पाठ जेड़ा एड़े ते अदक दा प्रभाव दे के उचारण करना, अलहो पूला नी जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है, अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। मुल्क पाठ ही करना, आम साडी शब्दावली दे विच इहनूं असीं मुल्क कहिंदे आ कक्के दे नाल, पर साध संगत जी वैसे भी शुद्ध खखा ही है, पर गरीब नवाजियां ने भी कृपा इत्थे खखे दी कीती है। अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूरत नाम निवासी, दोह मह तत ना हीरा।
2: साध संगत जी, ओ भगत कबीर जी दे पास एक मुसलमान ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਝਗੜਦੇ ਹੋਏ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਝਗੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੁਣੀਏ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ब्राह्मण पाठ ही इथे शुद्ध है, बब्बे दा कन्ना इथे है नहीं। ए वादू लगा होया पोथियां दे विच, नवे सरूपां दे विच लाया गया है। बब्बे दा कन्ना साध संगत जी, बब्बे दे कन्ने तो बिना पाठ। ब्राह्मण ग्यास करह चौबीसा, काजी मैं राज राम जाना। राम पाठ आड है ते जाना अठ है, ए भी इकट्ठा छापिया गया है, पर संपर्दा दे विच अलग अलग पढ़ाया जाता है।

जय जा वंती नहीं कहना, जय जा बोल के वंती पाठ सारा इकट्ठा है। राग जय जा वंती महला नावा। एक साथ संगत जी ये बड़ा भुलेख है, कई महला नावा बोलते हैं, कई नावा बोलते हैं, कई नौवा बोलते हैं, ते नौ वाले भी हैगे विच विच। सो इस करके नावा ही उचारण करना, जिवें महला पहला दूजा तीजा चौथा पंजवा उवें ही नावा, नावा कह लो नावा कह लो, परंतु नौ जा साध संगत दी नौवा इदा नहीं उचारण करना। नावा नन्ने नु कन्ना वावे नु कन्ना।

0: तेरे लाना पाठ शोध्या सरूपां दे विच कईयां दे विच दुलावां नाल पाठ छापिया गया है, परंतु साध संगत जी रारे दी लां दे नाल ही पाठ शुद्ध है। अंत बार संग तेरे यह एक जात है।
1: अंत बार संग तेरे यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यों पसार।

ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, जन्म तो अखां दे खुलदियां ही मनुख दियां अखां कुछ खोज रही ने लग रही ने। कुछ विद्वान ऐसा कहने एक तलाश का ना ही मनुख है और मनुख है जीवन भर दी तलाश। जन्म तो ही मनुख की चेतना मनुख दे प्राण कुछ लभ रहे ने कुछ खोज रहे ने। खोज खोज के जो लभे है जो मिले है उस नाल तृप्ति नहीं होनी। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं इसका बोध भी कोई नहीं। तो तलाश जारी है जीवन दर जीवन जन्म दर जन्म अनंत काल। इस वास्ते कुछ विचारक कहने ने अनंत तलाश का ना ही मनुख है एक तलाश का ना कुछ खोज रहे कुछ लभ रहे। दोहरावां मैं खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं होई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी नहीं इसका बोध भी। फिर विद्वान कहने ने मनुख तृप्ति लभ रहा है तृप्ति तो बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख रजेवा लभ रहा है रजेवे तो बिना मनुख नु और कुछ भी नहीं चाहिए। जो रज जाए उन्हों राजा कहने ने राजा दे अर्थ जो रज गया और कोई इस दे अर्थ नहीं। जो रज गया है राजा जो भूखा है भिखारी। तलाश है राजा होण दी जमिया भिखारियां दी तरह जीविया भिखारियां दी तरह यकीन जानो मर गया भिखारियां दी तरह। मरदे दम तक तलाश ते जा रही है खोज ते जा रही है। खोज खोज के जो लभे है उस नाल ते रजेवा होया नहीं तृप्ति होई नहीं। तो जो रजेवा ही नहीं होया तो फिर राजा नहीं है कि जे राजा नहीं है तो फिर भिखारी है। जे मंग जा रही है तो मंगता है जे भुख जा रही है तो भिखारी है। भुखा भिखारी होता है रजे होया राजा होता है। प्रथम मनुख की खोज का केंद्र जमीन ए धरती रही है। धरती ने मनुख की झोली विच अन्न पाया धन पाया तन दिया जितनिया लोड़ा ने इदी झोली नो भरे। लेकिन जमीन मनुख नो रजा नहीं सके रजा नहीं सके तृप्ति दे नहीं सके। इतनी जमीन दे होंदे हां मनुख भुख है मनुख भुख है। मैं फिर अर्ज करा भुखे नु ही भिखारी कहते ने रजे हुए नु ही राजा कहते रज गए राजा। अजय भुखा है भिखारी भुख ते मंग ते मजबूर करे कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अनंत जन्मा तो ए भुख जारी है। तन दिया लोड़ा ने लोड़ा बड़ी सीमित ने। मन का लोभ है लोभ सीमित नहीं है नहीं। ज्ञानपूर्वक सरवण करना तन दिया लोड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं। जो पशुआ भी लोड़ा ने वही साड़ी लोड़ है। पर तन की लोड़ नो जब मन लोभ बना रहना है इसे एक निका जिया मैं उदाहरण दे दिया। जैसे भोजन की भुख है ठीक है मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा चलो चार पांच खा लेगा तृप्त हो गए तन ते रज गए तन ते राजा हो गए। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा जे और खाई भुख नहीं है ये खा रहे है ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया ये तन दी लोड़ नहीं ये मन दा लोभ बन गया। इस वास्ते कई ते कहने ने की करिए पेट ते भर गया पर मन नहीं भरिया मन भरदा भी नहीं। क्यों तन दियां लोड़ां मन दियां लोड़ां ही नहीं ने। पर तन दियां लोड़ां नूं
भ्रांति करके मन ने अपनी लोड़ा समझ ले। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। अब दी ज्ञात ले अर्ज करा, जो मन मन लेंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन भी दुनिया च नहीं है। सवाल ये नहीं कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देंदा है पढ़िया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या तो है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिन्हों मन मन लेता, मन मन लेता, मन पदार्थ नू मन लेता है परमात्मा नू नहीं मनता, मन परिवार नू मन लेता है निरंकार नू नहीं मनता। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिन्हों खुले दिल नाल कबूल करना होता है। मन धन नू मन लेता है मन धर्म नू नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नू मन लेता है संसार नू मन लेता है मन करतार नू नहीं मनता। जी तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है ताई ते आया। कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, मन मनदा है। गुस्ताखी माफ के माफ कर देना, गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखां करोड़ां च इक अद्धा मन मनता है बाकी नहीं मनता। इस संबंध च मैं दो श्लोक थोड़े सामने रखने हैं ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। ये दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी का। ये दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां का सिरलेख इको ही है, गौड़ी महला पंजवा बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी का इतने श्लोक बावन अखरी बाणी का नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग विच, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग विच। अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग विच गुरु अर्जन देव जी ने, और गौड़ी राग विच भगत कबीर जी ने अखरां दी महिमा गाई है। क्यों? आवाज ते पशुआं कोल भी है, कौआ भी काएं काएं करता है, शेर भी करे है, गऊ भी बोल, पंछी भी चहचहाते हैं। आवाज ते पशुआं कोल भी है, अल्फाज नहीं है। धुन ते पशुआं कोल भी है, अखर नहीं है, अखर नहीं। तो धुन तो आवाज तो पशु दी होंद दा ते पता चल जाए, और केड़ा पशु है यह भी पता चलता है भी ये शेर की गर्जन है। इस आवाज तो ही पता चलता पे कोयल है, इस आवाज तो ही पता चलता पे कौआ है। आवाज तो यह तो बोध होंदा है कि आवाज किस दी है, पर जिस दी आवाज है उसनों पूछिए तू कितों आया, किथे जाना है, की लभ रहा है। इस सब कुछ कहण वास्ते उहदे कोल अल्फाज नहीं है, अक्षर नहीं है। इस वास्ते पशुआं दा सारे दा सारा विकास रुकिया। हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने, हजारां साल पहले जिथे मनुख सी अज नहीं है। इसका जिन्ना बैरूनी विकास होया है सब अखरां दे आसरे दे होया है। अखरी नाम अखरी सारा, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण वाण,
ਅਖੜਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋ ਵਖਰ। ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਮਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਣ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜੀਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਨ ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਿਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਨ। ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਨੈਣ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਤ ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਿਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਤ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਖੋ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭਗਤ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬਣਦਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਰਾ। ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਪਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਸਤੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੋ ਬੋਲ ਐਸੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਹ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ,
कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी। इतनी कला किसी एक मनुख दे होंदी नहीं, पर उसने नवा महल बनाया सी उन्होंने घर, ते घर दे अंदर सरोवर, घर दी चट करनी सी, महल दा महूरत होना सी। बड़े बड़े मेहमानों नू बुलाया सी राजा, राजियां दा महल। तो आपदी गैत लई अर्ज करा, द्रौपदी ने उस सरोवर नू सजाया, उहदे ते इस ढंग दी पेंटिंग कीती। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਕਿਆਰੀ ਬਣੀ, ਇੱਧਰ ਕਿਆਰੀ ਬਣੀ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਲ ਕਿੜੇ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਲ ਕਿੜੇ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਰੰਗਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੋ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਸਤੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਗੀਚੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਬਗੀਚੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਗੀਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਡੁੱਬ, ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਚਲੀ। ਉਹ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਸਭ ਖਰਾਬ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੇ ਵਿਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੇ ਹੈ। ਮਨ ਮਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲ। ਬੋਲ ਜੋ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਬੋਲਾਂ ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਚ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੋਲ ਚ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਚਤਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ, ਆਪਦੀ ਗੈਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਤਨੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਬੋਲ ਗਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਚੇ ਬੋਲ, ਗਹਿਰੇ ਬੋਲ, ਮਧੁਰ ਬੋਲ, ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਨਮਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਲਕੇ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਬੋਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਤੇ ਝਗੜੇ 99% ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ, ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟਦੇ, ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਪਰੇ ਬੇਗਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।
क्यों बोलते ही नहीं। दो भरावां दे संबंध दे दीवार खड़ी है, क्यों बोलते ही बोलते ही। जिथे बंदे दा संबंध होवे मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है, उत्थे साडी बोलचाल है। मनुख दी दुनिया दी सारी तामीर ते मनुख दी दुनिया दी सारी बर्बादी 99% बोलां ते खड़ी है। ऐसे बोल धर्म ग्रंथां विच जिन्हां नूं पढ़ के ते जप के मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है, पर ऐसे बोल फैश लिटरेचर विच गंदा साहित्य किताबां विच जिन्हूं पढ़ के मनुख बिल्कुल शैतान हो जांदा। कुछ अक्खर ही ने उन्होंने मनुख नूं भगवान बना दिता, कुछ अक्खर ही ने जिन्हां ने मनुख नूं शैतान बना दिता। एक सच्चाई है, बहुत वड्डी सच्चाई है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी, भगत कवि अपनी बाणी च अखरां दी महिमा बयान करदे और उन्हां बाणियां दे नाम ने आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी, आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी, तख्ती अखरां दी महिमा है। गौड़ी मल्ला पंजवा बावन अखरे, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरे। हैरानगी हुई सी मैनू अखरां दी महिमा दे उत्ते इतनी मेहनत की थी। इतना कुछ समझाया गया और एक एक अखर दी मनुख सही वरतों करे। चलो हथ दी किधरे गलत वरतों हो भी गई है, पैर किसे गलत पासे चले भी गए ने, शायद इतनी तबाही ना होए जितना गलत अखर वर्त के तबाही हो जाती है, बर्बादी हो जाती है, नुकसान हो जाता है या मिलाप हो जाता है, कुछ प्राप्त हो जाता है। दूर क्यों जाइए, वाहेगुरु शब्द दो अखरां दा जोड़ है, राम अखर दो अखरां दा जोड़ है। ये दो अखरां दा जुड़िया होया अखर जब जब के मनुख राम दा रूप हो जाता है, परमात्मा दा रूप हो जाता है। बोल ऐसे कोई बोले राम दा रूप हो जाता है, बोल ऐसे कोई बोले निरा शैतान बन जाता है। मनुख दी दुनिया दी महिमा सारी अखरां ते खड़ी। भगत कबीर कहंदे ने एक एक अखर तो मैं की उपदेश रहा है, एक अखर ने मेरे लिए केड़ी दिशा बनाई, एक अखर ने मैनू की सोचण दे जो है मजबूर कीता। मैं इस वक्त एक अखर लैंदा क्योंकि 52 अखर कबीर दे ते 52 गुरु अर्जन देव जी दे, ज्यादा नहीं तो फिर 52 दिन ते चाहिए ना खोलण नूं, सुणन नूं, समझाण नूं, पढ़न। हां इक्को शहर विच मैं इहदी कथा जरूर कीती, जम्मू च 52 अखरी कोई 1.5 महीने समाप्ति हुई सी। 52 अखरी इस वक्त एक अखर नूं लैंदा, मां अखर उर्दू थमीम कहते हैं, एम पंजाबी मम्मा कहते हैं, मां। भगत कबीर कहते हैं मम्मा मन स्यों काज है, मन सा रे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोय। मां अखर तो मैं ये प्रेरणा रही है खोज मन दी करने, मन नो साधना है, मन नो समझाना है। क्यों मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सुख होवे, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मन दी खोज कर करके मैं इत्थे पहुंचिया, मन जैसा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा क्यों, एहो मन सकती एहो मन सी हो, एहो मन पंच तत्व को जी हो। मन मन जाए ते मन ही भगवान हो जाता है, मन ना मने ते मन ही शैतान हो जाता है। फिर सारी मन नूं मनाउण दे, मैं फिर दोहरावा, अक्सर मनुख कह देंदा है पढ़िया ते है मन नहीं मनता,
सुनिया ते है मन नहीं मनदा, वेखिया ते है मन नहीं मनदा तो फिर नहीं है, नहीं। मन जिसनों मन लेंदा है ते मन जिसनों प्रभावित हो जांदा है, मन उसे दी मांग करदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना, मन जिस दी मांग करदा है मन बार बार उसे नो याद करदा, मन जिसनो याद करदा है फिर मनुख उसे लई समा कटदा है, वक्त कटदा है, संघर्ष करदा है, मेहनत करदा है। हुण इसनो उल्टा के मैं दोहरावां, जिसनो मन मनदा नहीं ते जिसनो जिस तो मन प्रभावित नहीं मन उस दी मांग भी नहीं करता, मन जिस दी मांग नहीं करता मन उसनो याद भी नहीं करता, मन जिसनो याद नहीं करता उसकी प्राप्ति लई फिर मनुख को ना समा है ना संघर्ष है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी भी मनुख परिवार को निछावर कर सकता है, निरंकार वास्ते जिंदगी का दसवां भाग भी कोई नहीं, 24 घंटे एक पैर ते भी धन वास्ते खड़ा हो सकता है, धर्म वास्ते ते अमृत वेले का एक घंटा भी कोई नहीं। की होया झूम झूम के कीर्तन सुन ले, मन जिस तो प्रभावित नहीं मन जिसनों मनदा नहीं मन उसकी मंग भी नहीं करता, मन जिसकी मंग नहीं करता मन उसनो याद भी नहीं करता, मन जिसनों याद नहीं करता उन्हों हासिल कर ली ना समय ना संघर्ष है, लोड़ ही नहीं, गल खत्म। कबीर ते किसी ने जरूर ऐसा प्रश्न किया, उसी परमात्मा नु किवें जाने है, इन्ना महान परमात्मा और थोड़े को इतना महान ज्ञान, तुसी उस परमात्मा नु किवें जाने है, केड़ी साधना की थी। कबीर कहने कहो कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर, साडा मन हरी नु हरी करके मन गया, जैसे मन पुत्र नु पुत्र करके मन लेंदा, मित्र नु मित्र करके मन लेंदा, पत्नी नु पत्नी करके मन लेंदा, पति नु पति करके मन लेंदा, मां नु मां करके मन लेंदा, पिता नु पिता करके मन लेंदा, जिन्हों मन लेंदा है पर उदी याद भी चलती है, उन्होंने मंगता भी, और पुत्र नु याद करने लिए वाजा वजाने की लोड़ है, मित्र नु याद करने वास्ते तबला खड़काने की लोड़ है, पति नु याद करने वास्ते पत्नी नु याद करने वास्ते क्या कथा कहानियां की लोड़ है, फलसफा घोटन की लोड़ है, इसकी याद आपे आऊंगी, पुत्र की याद आपे आऊंगी, मित्र की याद आपे आऊंगी, भरा की याद आपे आऊंगी, पति की याद आपे आउंदी है, पत्नी की याद आपे आउंदी है, रह गई गल परमात्मा नु याद करना, इनू याद करना होवे तबले बजाओ, वाजे खड़काओ, तबले खड़काओ, छैने खड़काओ, गला फाड़ फाड़ के सुरदिश करके अलाप करो, ते दिमाग दिया नसां नु ढिला करके फिलसफा घोटो, कथा कहानियां करो, सेवा करो, पुन करो, दान करो, अमृत वेले उठो, मैं दावे नाल कहना सब कुछ कर दिया भी उदी याद नहीं आउंदी, नहीं आउंदी, जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं मन उसकी मंग नहीं करता, मन उसनु याद नहीं करता, उदे लई कोई समा नहीं, उदे लई कोई वक्त। कबीर कहिंदे मैं साधना पिया करदा कि मन नु मनाण दी, मन परमात्मा नु परमात्मा करके मन लवे, मन दिन रात यतन पिया करदा, पर मैं अवधि ज्ञात लई अर्ज करा एक हकीकत है, मन नहीं मनदा उन्हां दा जो गुरुद्वारियां च नहीं आउंदे, मंदरां च नहीं आउंदे, उन्हां दा मन भी नहीं मनदा जो आण के बैठदे ने, नहीं मनदा, अपने अनुभव द्वारा कहना नहीं मनदा। तुसी आखोगे ये गलत गलत बयानी है, मनदा थां ते आ गया तां पाठ कर दे, गुरुद्वारे आ गए तां मंदिर आ गए तां मस्जिद च आ गए नमाज पढ़न, खुदा नु खुदा करके मनदे हां, परमात्मा नु परमात्मा करके मनदे नहीं मनदे, फिर क्यों आया? ये फिर गुरु अर्जन देव जी खोलते हैं,
और गजब की गल ध्यान सुनना, मम्मे अखर कोई खोल मां अखर वो बावन अखरी कबीर दी, ये बावन अखरी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी। महाराज इस श्लोक विच कहते ने मनुख परमात्मा नु मनदा नहीं है, मनुख परमात्मा कोलो मंगदा मंगदा नहीं। मंग पूरी हो जाए तो संबंध टूट जाता है, मंग ना पूरी होवे तो संबंध गल खत्म। संबंध ते सिर्फ मंगदा। तो हुण अपने पावन पवित्र श्लोक विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते ने मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सो जाना। मंगदा ऐ दे ऐ दे ऐ दे ऐ दे। क्या परमात्मा देंदा है? देंदा। आख है मंगे दे दे, दात करे दाता देंदा। मंगदा है ओ देंदा है, मंगदा है ओ देंदा है। जो दे ही जा रहे हैं उस नाल जुड़ी जा रहे हैं, जो देंदा पे है उस नाल टूटी जा रही है। हकीकत है मम्मा मांगन हार इयाना, इयाना है। जो मंगन का संबंध परमात्मा नाल जोड़दा है इयाना है, ते जो परमात्मा नाल मनन का संबंध जोड़दा है, मनदा है, प्रभावित है, वो इतना सियाना है। महाराज कहते मन्ने की गत कही ना जाए, देखो कहे पछे पछता। वो महिमा बयाने नहीं की थी जा सकती जो परमात्मा को परमात्मा करके मन है। इतनी सौखी खेड ना समझा सी मन दया गुरु नु आया गुरुद्वारे नहीं, मंगते हैं कुछ चाहिए है। कुछ कामनावां संसार को नहीं पूरी होंगे शायद गुरु तो पूरी, कुछ कामनावां परिवार तो नहीं पूरी होंगे शायद गुरु तो पूरी, कुछ खेड़ बाजार विच नहीं बन सकी शायद गुरु कोल बन जाए, कोई खेड़ मित्रा पुत्रा कोल नहीं बन सकी शायद प्रभु कोल बन जाए। मंगन दस गुरु अर्जन देव जी महाराज फिर उसे ही श्लोक विच कहने ने मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सुजाना। पर जो मांगे तो मांगे बिया, जानते कुशल ना कब हो थी है। बिया लेंदी पंजाबी दा अक्षर होवे, इहदे अर्थ बन जाने ने और बिया मंगदा है, और मंगदा है। ते बिया शब्द चढ़दी पंजाबी दा होवे अमृतसर जलंधर दे जो बोली जाती, पर बिया दे अर्थ ने परोठा है, बई रोटी है, बिया भोजन है, परोठा भोजन है। इत्थे जो अर्थ बनते ने वो लहंदी पंजाबी का शब्द है, होर मंगदा है। जो मांगे तो मांगे बिया, परमात्मा को जो कुछ भी मंगदा है परमात्मा नु छोड़ के होर मंगदा। ऐ दे ऐ दे ऐ दे, ऐ मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए। फिर परमात्मा आखे मैं भी आ जावा तेरे घर, ना ना तेरी कोई लोड़, तू एक पास तेरी लोड़। होर मंगदा है परमात्मा को, परमात्मा को परमात्मा नु नहीं मंगदा। इस वास्ते होर ते मनुख कोल हो जाता है, परमात्मा नहीं होता, नहीं होता, आंदे आया भी नहीं होता।

0: परमात्मा हो जाना ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने सारियां नूं दित्ते हुए सीमत ने यह असीम हो सकते ने उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए पहले दर तक पहुंचिए फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी प्रवान करनी सारियां दा और मुखी सजणा दा बार बार धन्यवाद फुल चुकदी शमा वाहेगुरु जी का खालसा
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal reha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
3: Namo Sarmane Samaste.

बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बेनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपोगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते

नमस्तंग सनानंग नम मंत्र मंत्रंग नम जंत्र जंत्रंग नम इष्ट इष्ट नम तंत्र तंत्रंग सदा सचदा नंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरंग परोच पा

जल है थल है पीत है पे है प्रभु है जू है देश है भेस है भुजंग प्रयात छंद अगाध अबाध नदी स्वरूप नमो सरमाने समस्ते निदाने नमस्तमंग नरनाथ नमस्तमंग परमाथ नमस्तमंग अगंजे नमस्तमंग पंजे नमस्तमंग अकाले नमस्तमंग अपाले नमो सर्ब देशे नमो सर्ब पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्ब रोगे नमो सर्ब भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व करेसंग नमो सर्व रंगे तरभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धंग निवासी चरपट।

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे।

स्वरूप है तेरे मुक्त बेभूत है पर तेरे भूत स्वरूप है पर जूत पर भूत प्रभा है सुजूत सुदा है। निरुक्त स्वरूप है तेरे मुक्त बेभूत है पर भूत प्रभा है सुजूत सुदा है।

अनंगी अनामेत्र पंगीत्र कामेत्र बरगंग तरबाद अगंज अगाध सबंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग त्रिभूत स्वरूप है छेज है छूत है कनरकंग प्रणास है पृथ्वी और प्रवास है निरुत प्रभा है सदैव सदा है विभूत स्वरूप।

परमात्म सर्वात्म आत्म बासै जासके जासै पुजंग प्रयात छंद। नम सूर्य सूर्य नम चंद्र चंद्रे नम राज राजे नम

नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणास अगंजुल अनाम समस्तल निवास निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूप को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय बेपूते गजाय बगनी में हरियं करियं करिमल रहीम चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग बेपूते।

जत गूढ़ गजानक सुंदर हिंसत ही है राजा जारे भूत भयख भवान के भूपत कौन गाना नहीं जात बचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसे खै भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पे खै पौन आहार जति जत तहर सब सुब चार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सोद।

चेत्यावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तिग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंक।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसुन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पेंगन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी।

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज चबर शतर और तख्त के मालक राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु समर्थ सतगुरु प्रतख सतगुरु पूरा सतगुरु सूरा सतगुरु सिर उपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिसे बड़ा न कोहे। ऐसे दीन दयाल सतगुरु तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपार रहमत मेहर हुई है। अमृत वेले दियाँ अमृत पवित्र दातां दे नाल गुरसिख संगतां नूं निवाजिया है। सचे पातशाह जी ने कृपा की है अमृत वेले अपने सोहने दरबार दे विच सोहने पवित्र तख्तां उत्ते प्रकाशमान हो के दर आई संगत नूं पवित्र दर्शन दीदारे बख्शे हन। गुरमुख नाम दान इशनान अलाही हुक्म सचे पातशाह जी ने फरमाया है और नितनेम सचे पातशाह जी ने बख्शिश कीता गुरु घर दे असूल मुताबक। सिमरन आसा जी की वार दा कीर्तन छे पौड़िया नंद साहब जी दा कीर्तन उपरंत अरदास गुरु जी ने दाराई संगत नूं पवित्र फरमान बख्शिश कीता है। शुक्र है गुरु का ये अमृत वेले दे आपदे हजूर की सेवा सचे पातशाह महाराज जी ने सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी बैरू सिंह साहब ज्ञानी मनदीप सिंह जी तिन्हां नूं बख्शी है। आसा जी की वार दा कीर्तन बड़े प्यार नाल हजूरी रागी जथा सचखंड श्री दरबार साहब सो ज्ञानी गुरजीत सिंह जी सो तिन्हां ने कीर्तन की सेवा की है। कोई समा गुरु शब्द की विचार सचे पातशाह ने मुख वाक बख्शिश किया है। सतगुरु मेहर करन ज्यों बुलाए त्यों बोलीए या आ बुलाए सोए ज्यों बुलाए त्यों बोलीए कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी नाल पाठ करनगे पचंगी सिंह भाई साहब भाई तेग सिंह जी। आओ जी रसना करांगे पवित्र प्यार नाल बोलिए जी सतनाम श्री वाह।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस नरंजन

परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आद गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन हो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन हो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ा बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक ले। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी कोई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थो तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा दिंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच उह पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई वारी चंद्रमा नू देखना हो जांदा है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ए अपनी थां सारी रात बदलदा है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उहने ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं घुमाना है, उहदा सुभाग है चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उहने सवेर तक लहिंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उहनूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओहदी गर्दन झुकना भी ओहदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओह केड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण ओह दिस नहीं रही पर ओहदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने ता अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खेड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओ पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओ खिच पानी विचों उन्हूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उन्हूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओ असमान दे उते ओ धरती दे उते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारिए सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपीआ कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा, ओ भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओदे विच वी एक खिच है, चकोर विच कमल फुल विच चकवी विच मोर ते बबीए विच ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है। प्यारिया के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ए बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना है परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटा बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटा बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार नेह ये जितने भी शब्द असी वर्तने हैं जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जेड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुर्दे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं ता प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा है बिन प्यार मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं ओ मुर्दे नु जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन की गल की हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा की एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे की प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदो वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ऐ मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना
बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचो पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचो भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन। ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिट्टी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिट्टी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कह लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है। ते जदो नमाज अदा पे कर देने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दे जदो तलियां पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए। ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष जी है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते, आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उत्थे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच उदे जिक्र विच उदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्धा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपां वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां। उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई। कैसी भगती की थी? केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं,
अपने आप नूं पूर्ण तौर ते रब दे चरणां विच उन्हां ने फिदा कर दिता, उन्हां ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणां नूं अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया, सच्चे पातशाह ये तां आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर यह दसो प्रीत कैसी करिए, प्यार किहो जिहा करिए। कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहिंदे कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझण लई है, अपनी जिंदगी दे टुकाण वास्ते ना, के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नूं प्रगट करन लई। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, घो के, उहदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगां पैदा होईयां, लहरां पैदा होईयां, ते जदों पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वजी, कमल दी नाली नूं वजन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जिहड़ा जड़ तो लै के फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी उहनूं लहर धक्का मार के खब्बे, कदी सज्जे, उन्हों सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सज्जे नूं तकदी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नूं प्रीत किवें करीदी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जिहड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं देंदा हुंदा। ते सच जाने जेड़ा बंदा मित्रता करदिया होया भी उलामे गिले शिकवे करदा, ओ कदी प्रेमी नहीं हो सकता, ओ कदी प्यारा नहीं हो सकता। कहन लगे इस कमल दे फुल नूं पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नूं, ते बाणी विच गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है, तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है। तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके कोई प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरां खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नू, तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरां मार दे, छड परा इहो जिहा पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड़ दिता, उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने, इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना पानी नू छड़न दी देर, कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना, मेरी खौंद नू खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार, ना एदे तो निर्लेप दा, ना सुगंधी, ना रूप ते ना भवरे, तां की होया जे पानी ठोकरा मारदा। आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने, एक गुण भी तां मैनू पानी ने कृपा करके बख्शे ने ना, जिन्हें गुण दिते ने एदी ठोकर भी सहारांगे। हजूर ने कहा ऐ मनुख, प्रेमा भगती दा अर्थ है कमल दी थरा तू प्यार कर। किवें? परमात्मा ने तेनू सुंदर दे दिती है, परमात्मा ने तेनू गुणा दी सुगंधी दिती है, परमात्मा ने तेनू सुरत दिती है संसार विचों निर्लेप रहण दी जुगत दिती है, परमात्मा ने तेनू ताकत दिती है करोड़ा जन्मां दी दूरी होण दे बावजूद तू सुरत करके ओदे चरणा नू पकड़ के खेड़ा प्राप्त कर सकना। जिस परमात्मा देव ने कमल दी तरह तेरे ते इन्नी कृपा कीती होवे, ते जे फिर भी थोड़ा जा झटका लगे दुनियावी, ते यक लखत परमात्मा वालों मुंह मोड़ के पिट करके चला जाए, सच जानी ए कदी सच्चे प्रेमी नहीं हुंदे। प्रेमी तां होवे जिहड़ा ठोकर खा के भी अपने प्यारे दा लड़ कदी ना छड्डे। एवे प्रेमा भगती, बाबे नानक ने ऐसी प्रेमा भगती कीती, ते बाणी विच बचन कर गए, कहन लगे रे मन ऐसी हरशों प्रीत कर,
ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਏ, ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਝੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਠੋਕਰਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੋਟਾ ਆ ਜਾਏ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੜਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਕੈਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਅਦ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਘਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਓਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਅਦ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਕਿ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਚਾਤਰਕ ਮੇਹ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਪੀਆ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਤਰਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਤਰਕ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਤਰਕ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਨਕ ਮਾਨਕ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਜ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਕਨਕ ਮਨ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਚੱਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ,
तेनू आ दुनिया का हर स्वाद हंडाण वास्ते भोगां वास्ते पदार्थ दे देने हैं। अगो उत्तर मिलता है राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। ओहा प्रेम प्री कनक मन गज मोतियां लाल नै ना नहीं। राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। ओनू चाहिदा कि चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही। कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री एवे प्रेमा भगती। मेनू तेरे चरणा दी शरण चाही दिख। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। भगती प्रेमा ला लिव ला के कीती। ते मेरे सच्चे पातशाह ने फिर बाणी विच कहा रे मन ऐसी खरशो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार भर थल हरी आवले। पर प्रेमा भगती करने वाला बूंद नू एक बूंद ना पवही के जितने मर्जी पानी दे भंडार होन पर चात्रक दी प्यास केवल स्वांती बूंद ही बुझाएगी। साहब ने पहला प्रमाण कमल फूल दा दिता, दूसरा कृपालू दाता जी ने मच्छी दा दिता, तीसरा प्रमाण सच्चे पातशाह ने मेर कीती चात्रक दा दिता, ते चौथा प्रमाण दिता प्रेमा भगती है कि प्रेमा भगती कीती। ते गुरु नानक साहब दे अमृत बचन असीं पढ़ने प्यारो प्रेमा भगती है कि अपनी ता एक जबान भी टेक के गुरु गुरु नहीं जपदी। जे किते टिकण दा यतन करिए पांच सात मिनटां भी थक जांदी है। टेक के बंदे तो रब रब क्या ही नहीं जांदा। सारा दिन आदमी तो गल्लां करानियां होण निंदिया करनी होवे। मैं कई बारी अर्ज करना बंदा बीमार होवे ना हमदर्दी प्रगट करन जाइए ते ओ बड़ा ऐसता ऐसता बोलेगा। घर दे भी कहणगे बुलायो ना डॉक्टर साहब ने रोकिया है वरजिया है इना बोलना नहीं। आम गल्लां करदियां ऐसता ऐसता बोलेगा किते थोड़ा जिहा निंदिया दी कोई तवा लगण दा देर है सच जाणियो पता नहीं कितों आवाज निकलदी ओही बंदा उच्ची उच्ची बोलन लग पैंदा है। की कदी साडी जबान परमात्मा नहीं इन्ना उच्चा बोलदी है। रसना संसार लई कूकेगी रब लई कदी नहीं कूकदी। हां जिदी कूकन लग पै प्रेमा भगती विच बाबा नानक जी कहिंदे फिर ओदी एक जबान ही केवल नहीं कूकदी सिर तो पैरां तक जितने ओदे रोम ने हर रोम ही जबान बन के कूकन लग पैंदा। एवे प्रेमा भगती। बाबा जी ने अमृत बाणी विच एक बचन कहा हे जे वेह गुरु अर्जुन साहब श्लोक संस्कृति हे रस गए मधुर प्रै तोयंग हे जबान हे रसा नू चखण वालिए तेनू गल्लां चंगियां लगदियां ने तेनू भोजन प्रसाद पानी चंगे लगदे ने हे जेवे हे रस गए मधुर प्रै तोयंग सत हतंग जदों किते सत नाम वाहगुरु दी गल चले इंज लगदा जिवें तेरी मौत हो गई है तू मूंह च है ही नहीं। अंज लगदा जिवें तेरी अंदर दी ताकत ही खत्म हो गई। हे जेवे हे रस गए मधुर प्रै तोयंग सत हतंग सत विच तेरी मौत हो गई। परम बादंग जे परम बादर ते वड्डे तो वड्डा झगड़ा खड़ा करना होवे ते जबान तीली नूं तां कसाणा पैंदा है तां ओह अग लांदी ए। सिर्फ तू तां अपनी एक निक्की जी तीसी खलाण दी दे रे ते कई पुश्तां दे आपस विच पवाड़े पा के रख देनी है। ध्यान दिया जे जबान दी शक्ति जे रसना दी ताकत जे जेवां दी ताकत एक थोड़ी जी तीसी खलाए ते कई जन्मां दे पवाड़े कई पुश्तां दी आपस विच कतलो गारत तक गल पहुंच जांदी ए। जे जबान इन्नी वड्डी दूरी भी पा सकदी ए चेते रखियो इहदे कोल शक्ति ए जे रब रब जपन लग पए ते करोड़ां जन्मां दी दूरी मिटा भी सकदी। कली दूरी पांदी नहीं इह दूरी मिटा भी सकदी है। हजूर ने बाणी विच मेहर कीती जदों उहनां ने प्रेमा भगती भी जुड़े ते बाबा नानक जी नूं जे कोई पुछदा है कि सतगुरु जी परमात्मा नूं पाउण दा मार्ग की है ते सच्चे पातशाह कहिंदे ने इह मार्ग है इक दू जीवो लख हो है किन्नी भगत प्रेम लिवलाई इन्नी भगती कीती इक जबान तो लख जीव हो गई लख दीव तो भी लख हो गई ते उस भी लख जीव विचों एक एक जीव नाल लख लख वरी जगत दे मालक दा नाम जपिया
ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲਖਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤਰਾਹ ਪੱਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਆਕੀਸ, ਇਹ ਨੇ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਠੀਸ, ਠੀਸ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ, ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਠੀਸ, ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੂੜੀ ਗੱਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੂੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚੋਂਦਾ, ਗਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਗਾਲ ਦਰਦ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਹੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟਾ ਸੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਤੇਲ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਮੱਖਣ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਕਦੀ ਘਿਓ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲ ਦਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ 6 ਕਿਲੋ, 6 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਟਵਾ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਦੇਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ, ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਡਿਆ ਵਾਂ
कि जिन्हें मैनू रूप दिता रंग दिता कीमत पाई मेरा चित करदा मैं इनू शेक लगन तो पहला पहला अपने आप नू क्यों ना साड़ देवा क्योंकि मैं अपने प्यारे दा शेक नहीं सेक सकता मैं अपने आप नू कुर्बान कर सकना। यह वे प्रेमा भगती नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई ते प्रेम लिव ला के भगती करके सानू क्या रे मन ऐसी खरशो प्रीत कर कैसी जैसी जल दुध होए जिमें दुध दी ते पानी दी प्रीत है ते फिर देखो इथे आके मुकम्मल प्रीत बनती है जिमें मैं उदाहरण पहला दित्तिया ने जे हुण मैं ये कही जा कमल दा फुल खिड़िया ते पतंगा ओदे ते आ गया ते आप कहोगे वेखो बंदा किहो जी गल करदा कमल दे फुल ते भवरे हुंदे ने पतंगे ता दीवे ते जांदे ने जे मैं कहां जी दीवा बलिया ते कीड़िया आ गई तुसी कहोगे मूर्खता ही वाली गल दीवे ते कीड़ियां कीड़ियां तो मिठे ते जानगियां हुण शब्द सुरत कीनी वरखाई ताते अंगद अंग संग भयो शायर ओ समुंदर बने ते समुंदर दे वेच नियां नहीं रखियां जांदियां समुंदर लोकां दे घर नहीं बनांदा समुंदर अपने विचों बदल पैदा करके केवल बरसात ही करदा है ताते अंगद अंग संग भयो शायर समुंदर बन गए तेन शब्द सुरत कीनी वरखाई उस गुरु अंगद साहब ने इनी कृपा कीती उन्होंने शब्द ते सुरत दी वरखा कर दिती। आओ एदी प्रोड़ता गुरु ग्रंथ साहब करनगे कहन लगे लंगर चले गुर शब्द हार तोट न आवी खती है जेड़ी खती बाबा नानक खट के गए ने ना ओदा तोटा नहीं आना। इस तो पहली एक बचन है नीम किने रखी नानक राज चलाया सच कोट शतानी नीम दै बाबे नानक ने नीम रखी हुण अगे ए स्पष्ट होवेगा कि गुरु नानक साहब झड़ी लांदे पए ने गुरु अंगद साहब के नहीं रख रहे ने। बचन है लंगर चला गुर शब्द हर तोट ना आवी खतिया खर्चा दित कसम दी दर ते बाबे नानक दी रब दी दिते हुए खर्चे नू गुरु नानक साहब दी जोत गुरु अंगद साहब वंडन लगे ने खर्चे दित कसम दी आप खैदी खैर दबतिया। हुण देखो शब्द ने खर्चे खर्चन वास्ते दिता बाबे नानक ने खजाना नाल कह दिता आप खैदी आप खाया जे खैर खैर दर से जेड़े मंगण आउणगे उन्हां दी झोली विच पाया जे। हजूर ने कहा कि लंगर चला गुर शब्द हर तोट न आवी खतिया खर्चा दित कसम दी आप खैदी खैर दबतिया। इत एक बचन कीता कहन लगे मेरे दाता जी के आप जी उते एनी कृपा भी हुंदी होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए नूर दी वरखा हो रही है गुरु अंगद साहब उसे वरखा नू लोकां तक पहुंचा रहे ने क्योंकि गुरु नानक साहब ने उन्हू अपना अंग बनाया है। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। एक बचन आप रोज होर पढ़ दियो बरे हैं दरगह गुरु की कुदरती नूर हुण वरिया नहीं वरिया दर से वर रहा है वरख रहा है की वरखदा है कुदरती नूर परमात्मा दे घर विचों रूखानियत दे बदल बन के गुरु अंगद साहब उन्हां दी बरसात पै करांदे ने ते जेड़ा आउंदा उन्हू नाम नाल भेज दिंदे तांते अंगद अंग संग भयो शायर तीन शब्द सुरत कीनी वरखाई ते गुरु नानक साहब ने की कीता इनू भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच कह कहन लगे प्यारियो के गुरु नानक साहब ने मेहर कीती पारस होवा पारसों गुर उपदेश गुर परचे गुर उपदेश विच रहना है चंदन होवा चंदनों है दीपक ते दीपक प्रगाशिया है। हुण धन गुरु अंगद साहब शब्द सुरत दी खेड नहीं वरतांदे कैसी वरखा पै करदे ने भाई पारो वर्गा आउंदा ते ओ जदों आके पुछदा महाराज हंस और परम हंस की है ते बाबा नानक जी दी जोत गुरु अंगद साहब वरखा करके कहिंदे ने कि पारो ते भाई पारो जुलका सी पारो हंस हुंदे ने जिहड़े दुध पानी नखेड़दे ने
ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਹੰਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਸਾਰ ਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਲੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਤ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਇਹ ਅਸਲ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਸ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਦਾਰੂ ਕਿਦਾਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਧ। ਇਹ ਜੋਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਧ ਖਹਿਰਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜੋਧ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਦਾਰਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਖੂਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵਾਂ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖੌਂਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਕ ਨੀ ਸੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਵੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ।

कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगम अतोलय

ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਉਪਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਛੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੰਦ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ। ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਮ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ। ਤੂੰ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੁਹਾਣ ਤੂੰ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਲਾਸ ਹੀ ਉਲਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੀ ਚਾਉ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਪੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਏਕ ਵਕਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਵੱਜਾ, ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਤਵਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूह है जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नु मत्था टेक दी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईआं दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थीए जां हृदय कुछ उदे कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है। जिस दे अगो तू झुक रहे हैं ना तेनू समझ ना तेनू बोध ना तेरी श्रद्धा ना तेरा भरोसा। ये शीस निवाइए क्या थीए जां हृदय कुछ उदे जाए। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख दी तर्जे जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नु अपने विचार अर्पण करने की जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेट करन दी जाच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करदा है, गुरु अपने विचार इस नु दे देंदा है। मनुख दे विचारां विच लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां विच काम है, गुरु दे विचारां विच राम है। मनुख दे विचारां विच हंकार है, गुरु दे विचारां विच निरंकार है। मनुख दे विचारां विच क्रोध है, गुरु दे विचारां विच दया है। मनुख दे विचार विच मोह है, गुरु दे विचार विच प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की है, अपने विचारां नु भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिर इन्हां चारां दा मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहंदे ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस ऊपरले रखियो गुमान है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमें प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना। तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। ते जैसे असी वक वक रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नु नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्मे ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मा दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक वक दे दिता। किसे नु गोरा, किसे नु काला, किसे नु सांवरा, किसे नु लाल, किसे नु जर्दी मायल, किसे नु गेहुआ रंग, एक रंग नहीं है। तू वेखी जगत उपाया, परमात्मा दी पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेकां रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है।
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े आया मांस, और मांस देते लिपटी हुई मिंज, और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार, सोचनी, चितवनी ते आहंग, इसनू कहिंदे मन बुद्ध चित आहंग, मन बुद्ध चित आहंग। इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे, चतुष्टा अंतःकरण। चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, ते किस विचार नू तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया, बुद्ध। ते जद मनुख किसे नू याद करदा है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, वही मन बन गया चित्त, मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन, मन बुद्ध चित आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हां, एक निर्मल हंकार भी आंदा है। पहले मनुख तन दा मान करदा है, धन दा मान करदा है, जोबन दा मान करदा है, प्रभुता दा मान करदा है, परिवार ते मान करदा है, जात ते मान करदा है, कुल ते मान करदा है। लेकिन जद हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते मान करदा है, बाकी किसे ते मान नहीं करदा, गुरु ते मान करदा है। तान मान दीबान साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते मान। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है, ये ते महिला है, हंकारी है, यही लोकां कोल है। कोई जोबन दा मान करदा है, कोई प्रभता दा मान करदा है, कोई धन दा मान करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा मान, जोबन दा मान, प्रभता दा मान। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, मान तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी माण आउंदा उन्हां कोल, किस ते? उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने, माण मांगो, तान मांगो, धन लखमी सुत दे, हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल तान नहीं, उहदे कोल माण कहदा, और जो निताणा है निमाणा है, उते मरण तो पहले मर गया, उते कबर दे चला गया, उते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, और मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगत नहीं, कमजोर कहिंदे उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसे तरह दी भी कोई ताकत नहीं, ना धन दा जोर, ना जोबन दा जोर, ना कुल दा जोर, ना जात दा जोर, तो जोर किस दा? जोर हुण प्रभु दा। तान मान दीबान साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हुण तू मेरा तान है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही मान है।
परमात्मा निर्मल है, उसका माण भी निर्मल है, बाकी हंकार मैला है। विचार जब बदलते ने तो हुण मैं अर्ज करा मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचने विच की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदिआं संसार बदलदा है, सोचणी दे बदलदिआं ही जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदिआं, यादां दे बदलदिआं ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदिआं ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा होंदा है मनुख दे विचारां विच की है, सोचणी विच की है, यादां विच की है। धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहिंदे ने कि मनुख दे विचारां विच, मनुख दी सोचणी विच और मनुख दे चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है, और की है, कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचणी नूं, सोचणी विच की है, और पढ़ो अपनियां यादां नूं, यादां विच की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है, अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाणा, सिर के लेख ना पढ़े इयाणा। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न की जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे, शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे लीन है, मन नो समझण की कोशिश पिया करता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ते इत्थे तक कहिंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े सियाने सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दिया गहराइयां नु समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाए दा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिदा मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिदा है गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लैणगे, किवें कर लैणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और ओ कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिदा है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा ओही कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया। किसी होर ने नहीं ठगया, मन नहीं ठग लिया बिशनु नो, मन नहीं ठग लिया शिवजी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो।
जो आम साधारण मनुख भूल कर देने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करता है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रख देने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है, मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है, क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है, जिड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है, गुस्सा आउंदा है। जिड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है, जिड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिड़ा हंकार नू पठे पा दे प्यारा लगता है, चंगा लगता है, जिड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं, थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकती, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते ने, कहते ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान, असी ना ही तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक ही जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इते केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनु कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नू पठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है, और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नू समझना है, थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है, ये भी मैं अर्ज कर दें। और अंतरमुखी होए बिना कोई समझ भी नहीं आएगी, तो अंतरमुखी ओ ही हो सकेगा जो सुनदा है। तो सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल इको ही है, ठिकाणा इको है। साढ़े हिंदू वीर जाते ने मंदिरों में दर्शन करने लिए किसी देवते अवतार की मूर्ति दे, सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है।

ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਾਧਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮਾਹੋ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਾਪ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣ ਉਹੀ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਸੁਣਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸੰਤਾਪ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਚ ਕੇ ਮਿੰਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਵਾਨਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਦਾ, ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ, ਇਹੀ ਦੇਹੀ ਗੁਣ ਬਣਦਾ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ, ਇਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਔਰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਇਕਾਗਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਸ਼ੌਕੀਆ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਦਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਵਾਜੇ ਦੀ ਸੁਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੁਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਤਾਲ ਤਬਲਾ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਰਸ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ
कीर्तन सुनदे किसे नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखिया कीर्तन दा रस ते किसे नूं विरले नूं ही आउंदा है। लोक सुरां दे आवाजां दे अगले दे रंग रूपे च या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जांदे ने, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं ते इत्थे तक देखिया इतनी नीवीं लोकां दी सरोत ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए, सच दी विचार फोकियां साखियां नहीं। और जिहड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी उस दी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश करदे ने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने अनेक हैं फिर एक हैं, जो एक होंदा होया अनेक है ते अनेक होंदा होया एक है। इति पहली हो गई, वो अनेक भी है वो एक भी है, वो एक भी है वो अनेक भी है। हाँ वो आकार रहत है वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसे ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज नवी चाल और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने। और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, 10000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने तो एक जैसे ने, कतई नहीं। रंग दे रूप दे आकार दे वजन दे स्वाद दे लाजमी फर्क होएगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साडी पकड़ विच आवे भावे ना आवे, वह फर्क साडे तौल विच आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा विच रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाउण लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होवेगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज सड़ी पकड़ दे सड़ी समझ दे आ गए ने। इतने इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे चने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनंग। सूरज घट रहा है एक दिन मिट जाएगा, चंद्रमा घट रहा है एक दिन मिट जाएगा, धरती घट रही है एक दिन मिट जाएगी।
मनुख घट रहा है एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बदता है घटता है ते मिटता है। ये तिने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारियां ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं ते अपनी जवानी हंडा चुके है, बुढ़ा हो गया है। 40 लाख टन वजन एक सैकंड दे चिस्दा घट रहा है। घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग, गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नु ही महापरले कहंदे ने। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे हैं, भावें अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है घटदी है मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दौरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नू ना लईए, लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वख वख है, पर इस सारी अनेकता दे रमया होया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों होया? धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने, एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या तो बच्चे खेडते ने, खेल या परमात्मा खेडता है, बाकी खेल नहीं है। जिस दिच जित होवे जिस दिच हार होवे वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दिच नफा होवे जिस दिच नुकसान होवे वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड्डियां खेलां ओलंपिक मेरी दृष्टि, वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, कहिंदे फलाना मुल्क हार गया है, फलाना मुल्क जित गया है, ये जंग है या कि खेल है? और जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, सोगवार होके आंदे ने, रोंदे हुए आंदे ने। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी जित जान, नचदे हुए आंदे ने, मुल्क दे उनां दा स्वागत आंदा है, उनां नू इनाम मिलदे ने, जैसे किसी मुल्क नू जित के आए ने, और वाकई नाम भी लिया जांदा है, फलाना मुल्क हार गया, फलाना जित गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनू मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं। जिस दिच जित है जिस दिच हार है, जिस दिच हार दी घृणा होवे, जिस दिच हार दी बेइज्जती होवे, ते जिस दिच जित दा तकब्बुर होवे, उनू खेल आखण दी की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दिच नुकसान दा दुख होवे, जिस दिच नफे दी खुशी होवे, उनू खेल आखण दी लोड़ की है? ये ते धंधा है। खेल बच्चे खेडदे ने, खेल परमात्मा खेडदा है। दरिया दे कंडे ते सागर दे तट ते बच्चे खेल पे खेडदे ने, रेत दे महल खड़े कर रहे ने, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हां बच्चियां ने इन्हां महलां विच रहना है जो इतनी मेहनत नाल पे बनांदे ने, इतनी एकाग्रता नाल बना रहे ने? नहीं, खेल है, पर बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे ने। महल बन गए ने, इधरों सूरज डुबण वाला है, शाम हो गई है, घर दी याद आई है। हसदियां हसदियां रेत दे महल खड़े कीते सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे ने। बड़ी एकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे ने। जद बनाण लगे सन खुश हसदियां हसदियां, अज मिटाण लगे ने खुश
हसने हसने खेल है, तंदा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिठाना भी खेल सी, आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी की नहीं माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने परमात्मा की दुनिया च भी ओदी दृष्टि जी सब कुछ खेल, जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद दे नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं। खेल तमाशा सुंदरता कुरूपता दे च बदल जाती है, हासे रोणिया दे च बदल जाते हैं। फूल खिलता है मुरझाने का तहैया लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हासियां दे थले परेशानियां छुपिया पई ने, दुख संताप जो है छुपे पे ने, जन्म दे थले मरण छुपया पे है। खेल तमाशा बनाण लगे हां प्रसन्नता है, परमात्मा नो बिठाण लगे हां भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जांदा है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जांदा है। खेल संकोचे तो नानक एक है, जैसे खेल नु संकोचदा है एक, तो जद खेल खेलन लगता है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। इस अनेकता विच जिहड़ा एक नू वेख लवे, एक नू समझ लवे, ओ पवित्र है। उसनू किसे नाल घिरना नहीं होवेगी, किसे मुल्क नाल, किसे जात नाल, किसे व्यक्ति नाल, किसे कौम नाल, किसे धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नू वेख के भी उस दे अंदर झरनाट वज जाएगी, मंदिर नू वेख के भी उसके अंदर खुशियां जागनगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलों लंघे आई उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगा पैदा होणगियां, भेद ते मिट गए। उहनूं दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है, अनेकता उसका खेल है, वास्तविक वह एक है। सूरज एक है, किरणा अनेक ने, सागर एक है, लहरां अनेक है। जिसनूं लहरां नाल नफरत है उहनूं सागर नाल भी नफरत है, जिन्हों किरणा नाल नफरत है उन्हों सूरज नाल भी नफरत है, जिन्हों अनेकता नाल नफरत है उन्हों एक नाल भी घिरना है। उन्हों एक दी कोई समझ नहीं, उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फैसला, एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। जे एक नू समझ जाए तो पावन है, पवित्र है, ते जे नहीं समझया तो अपवित्रता दी ढेरी। भट्टा ने इस संबंध च एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा, एकाग्रता बख्शने। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया, दो तीन चार पांच नहीं, एक। सिर्फ एक नू पढ़िया ही नहीं, मन विच भी एक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहंदे ने, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न तैयार, दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं, पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान ना जाई, तृष्णा राच ना पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़ता। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसी जीवन भर पढ़िया एक नो, सिर्फ पढ़िया ही नहीं, मन विच वसाया एक नो। तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए न जाणियो। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक नो, थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलते हो उन्हां च एक प्रगट आउंदा है, अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी एक, थोड़े अखां दे च भी एक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे, उसके व्यवहार तो, उसके बोलन तो, उसके वेखण तो, उसकी तर्ज जिंदगी तो, और किस तरह हो सकता है। गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकता है मंदिर विच रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उदे आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन विच निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास थोड़ी रसना ते इक, थोड़े नेत्रां दे चिक, नैण बैण मोह इक,
ਇੱਕ ਦੋ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ

0: दस में लीने हो, तीस एक और पंच सिद्ध पैंतीस निखेणे हो, ये सारे हिंद से जमा करने पड़ेंगे, जोड़ करना पड़ेगा। तीस एक और पंच सिद्ध पैंतीस निखेणे हो, तीस एक इकती पंच छत्ती ते पैंती इकहत्तर। हे गुरु अमरदास, ये अवस्था थोड़ी इकहत्तर वरे की उम्र बनी, इकहत्तर साल की अवस्था दे ऐसा जीवन आप नसीब होया। तीस एक और पंच सिद्ध पैंतीस निखेणे हो, इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरने हो। गुरु अमरदास कब भल भण तू एक लोड़े एक मने। कवि भल भट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा, थानू एक दी लोड़ है, तुसी एक नू मनदे हो, एक नू वेखदे हो, एक नू बोलदे हो, एक नू पढ़दे हो, और एक नू मन दे च वसाया। थोड़ी जागृत अवस्था दे च एक, थोड़ी स्वपन अवस्था दे च भी, तुसी इस गल नू समझ लिया है कि एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू कोई समझ जाए, एक नाल कोई जुड़ जाए, ओही पवित्र है, बाकी कोई पवित्र नहीं। क्योंकि उन्हू सारिया लहरां दे सागर दिखाई देगा, उन्हू सारिया किरणा दे सूरज दिखाई देगा, उन्हू सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा, उन्हू सारे पशु पक्षियों दे ईश्वर दिखाई देगा। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ए अवस्था जिसकी बन जाए, ओही पावन है, ओही पवित्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, तू एक होंदा होया अनेक है, और अनेक होंदा होया एक है। अनेकता तेरा खेल है, अनेकता तेरा तमाशा है, ते बस मैं यही तमाशा देखने लिए आया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। अजीब है तेरा तमाशा देख रहे हैं। एक सूफी का कहना है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कलब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। उसका तमाशा है, इतने हो होवेगा, तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है, और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसे ही अनेकता दे जिसनों एक दी समझ होवे, एक दिसे, एक रसना ते आ जाए, एक हिरदे च बस जाए, वो ते पावन है, वो ते पवित्र है, बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्तु बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक, एक तो गुरबाणी आरंभ होती है, सारी गुरबाणी एक दा ज्ञान कराती है। जो एक नाल जुड़ गया, बस ओही ब्रह्म ज्ञानी, ओही भगत, ओही संत, ओही फकीर, ओही वली अल्लाह, ओही अवतार, ओही महापुरुष, और ओही पावन, ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इस छंद की विचार सरवण करद, आप एक दी समझ पवे, और सिर्फ समझ ही ना पवे, सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे, ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ सड़ी झोली दे पै जाए। साहिब रहमत करन, सुन के थानू आनंद मिले, और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारे दा हार्दिक तौर से धन्यवाद। बड़े टिकाओ नाल, एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नू जह सरवण कीता। कल फिर इसे समय दास आप जी दे चरण परसेगा। पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण कराणगे, उस तों बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा। साहिब रहमत करन, इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ, 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 1698 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 1698 ਦਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ, ਰੈਡ ਜਾਂ ਓਰੇਂਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਵੋ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।